दूसरा रिचर्ड द फैंसी कॉस्मेटिक्स वाला सरा हाँ एमबी टावर वाला सरा अब फर्स्ट फ्लोर बड़ो बने चिपकी दुकान दिया अगर गरी चुप के मर करे की दुकान जब कुल आसमानी प्रोडक्ट्स उस रखा पास आंतिया खमो नसीब की मसर मिलावेगी फैंसी कॉस्मेटिक्स वाला सरा जी आओ थे मर करे पिदिनी दवा जमजम कॉस्मेटिक्स वाला सरा अलहरम मेगा मार्ट वाला सरा जी अथालाश की ग्रीन वेली कॉस्मेटिक्स वाला सरा दरोड़ी बाजार के ग्रीन पैलेस फार्मेसी वाला सरा कश्मीर स्वीट एंड बेकर्स वाला सरा खाल बाजार के तासुल ताहिर मेडिकल स्टोर खाल बाजार मोंटा के वही ज्ञान जन स्टोर और मैदान के तासुल असल सुपर स्टोर वर्षी दली कॉस्मेटिक्स वाला सरा थाना मलकन की पुआज जन स्टोर ऊज बाजार के सलीम खान कॉस्मेटिक्स वाला सरा जमुन तमाम आसमानी प्रोडक्ट तासुब इंतजार दीजिए अबट खेरी बाजार की जमुन आवाज सुपुरी ये सुमर द कॉस्मेटिक्स स्टोर दी बबट खेले के जमुन तमाम आसमानी प्रोडक्ट अभी सरकता आवाज कॉस्मेटिक्स हुसैन कॉस्मेटिक अयास खुशबू महल आओ से बस मंग आवाज कदा वक्त सो पूरी चरता हंगूपट बाजार के संगीत बाजार के जी पन्नू में कॉस्मेटिक स्टोर भी सब तमाम आसमानी प्रोडक्ट्स में 700 इंतजार भी है पिशावर 400 रोड पिशावर बख्शीपुर पिशावर फजाना शुगर मिल सरा पिशावर वाहिद गड़े आओ से बस मंग आवाज कदा वक्त और सुख चरता जी पिशावर फजगी रोड पिशावर वर्सिक रोड पिशावर यूनिवर्सिटी रोड पिशावर हयाताबाद पिशावर अकबरपुर जी ओ बाड़क हम सब तमाम आसमानी प्रोडक्ट्स 700 इंतजार भी हर मेडिकल स्टोर सर हर जन स्टोर सर हर कॉस्मेटिक स्टोर सर जी और उमर फार्मेसी जिसो न होम ब्रांचेस दी पिशावर की जमीन तमाम आसमानी प्रोडक्ट्स आज तक मौजूद है जी बाकी सुबह का आवाज के स्वाद के सुपुरी शिनवारी कॉस्मेटिक मीना बाजार में गवर स्वाद जफर शॉपिंग सेंटर कबल चौक स्वाद और सुबह का आवाज का दावा की चार सदा की नौशहरा की दरगाह की खुद मंजरी बाबा की उत्मांजू की अबड़क के लिए की सुपुरी आओ या सुबह का आवाज दावा की सुख कमेशन के लिए की उरी फर्श मोहल्ले की सुबह का आवाज सुपुरी अकोड़ा खटक की सुपुरी आओ दशानी सुबह आवाज नौशहरा की सुपुरी आओ या बबू बाजार की सुबह आवाज सुपुरी जी या सुबह का आवाज दावा की तमाम बाजेवर की सुख खमजी की हमोरी जी आसमानी कॉस्मेटिक्स सुम रहम प्रोडक्ट्स की तमाम बाजेवर की धूल सर मिला हुई दरी चुपास आसमानी नमगोरे जी बाकी सुबह आवाज का दावा की बनू की सुपुरी सराय नोरंग की लकी मरवत की अम्बीरी कला की शुमारी वजीरिस्तान जुनूबी वजीरिस्तान अडिये खान पहाड़पुर सब तमाम आसमानी प्रोडक्ट्स आप सुबह इंतजार दी इंशाला कभी वफा सा कान वफा होगा जुन वफा होगा तो सबा पर जुन दी बारिश हुई सबा में वो खिस्त पूरी प्रोग्राम से रस्ता सुबह खिदमत की हाजिरी गुजर आगे दाओ पर इकबल रोड डॉक्टर इसरार जान ला इजाजत पर कही दलो अल्लाह फमान आसमानी कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान जिंदाबाद।

साथ छोड़ेंगे महशर के दिन भी, मोहम्मद की खिदमतें में हाजिर रहेंगे। नहीं साथ छोड़ेंगे महशर के दिन भी, मोहम्मद की खिदमत में हाजिर रहेंगे। वहां पर जो

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
0: मोहब्बत समेट कर
3: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
0: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।